दिल के चैन को तो सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये चैन मुकाम मिल जाए। और दिल के चैन या सुकून के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो बहुत अच्छी चीज़ है जो अवेलेबल है, वो है म्यूज़िक। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सारी बाउंड्रीज को पास करके आप तक पहुंच जाती है, चाहे उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे उसका ओरिजिन कोई भी हो। आज का जो ECT देसी का एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है एक स्पेशल इंसान को डेडिकेटेड। प्यार से हम उनको पंचम दा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है राहुल देव बर्मन। एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जो एक लेजेंड की तरह से माने जाते हैं, और आज तक उनके डेथ के इतने साल के बावजूद भी उनके गानों को रिमिक्स किया जाता है, और आज भी हम उन गानों को पसंद करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वी लॉस्ट हिम क्वाइट अर्ली एट द एज ऑफ 54 व्हेन ही डाइड सडनली। फ्रॉम 1960 टू 1990 R.D. बर्मन या पंचमदा कंपोज्ड म्यूजिकल स्कोर्स फॉर ऑलमोस्ट 330 फिल्म्स, जिसके अंदर 331 फिल्में जो रिलीज हुई उनमें से 292 फिल्म्स वर हिंदी, 31 वर इन इंग्लिश, 3 इन तेलुगु, 2 इन तमिल एंड ओरिया एंड 1 इन मराठी। इसके अलावा R.D. बर्मन दा ने 5 TV सीरियल्स इन हिंदी एंड मराठी में भी म्यूजिक कंपोज किया। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक लोगों के साथ बहुत जुड़ के काम किया, जिनमें से एक है उनकी वाइफ आशा भोसले, किशोर कुमार और उनके बहुत ही जिगरी दोस्त राजेश खन्ना, जिनके साथ उन्होंने मिलके 40 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना, किशोर कुमार और R.D. बर्मन एक ऐसे ट्रायो थे जिन्होंने मिलके 32 फिल्म एक साथ की। निकनेम पंचमदा, ये नाम उनका कैसे पड़ा ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि म्यूजिक का सफर अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम।

ये जो एपिसोड है वो है डेडिकेटेड आरडी बर्मन यानी कि हमारे अपने पंचम दा को। इनिशियली उनका जो निकनेम था वो था टुबलू। क्या आपको पता है उनका एक निकनेम था टुबलू के नाम से, जो उनकी मेटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी ने रखा था, लेकिन बाद में उनका नाम पंचम पड़ गया। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी कहते हैं लेजेंड्स हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां जो मुझे पता चली हैं वो ये हैं कि उनका नाम पंचम इसलिए पड़ा क्योंकि व्हेन ही वाज क्राइंग इन हिज यू नो इन फैंसी इट साउंडेड लाइक द फिफ्थ नोट विच इज सा रे गा मा पा। तो उस नोट में वो साउंड करते थे इसलिए उनका नाम पंचम रखा गया। और इसी के साथ एक और थ्योरी जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब वो रोते थे तो वो 5 डिफरेंट नोट्स में रोते थे, यानी कि जब वो रोते भी थे तो भी इतना सुरीला रोते थे कि सुनने में मजा आता था। और एक और वर्जन भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अशोक कुमार यानी कि दादा मुनीर ने जब राहुल देव बर्मन को या पंचम दा को छोटे होते देखा तो वो बार बार रिपीटेडली पा पा पा बोलते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम निकनेम रख दिया पंचम। चलिए, इनमें से कोई भी कहानी हो या ना हो, हमें सिर्फ इतना पता है कि जिनका नाम पंचम दा था या जिनका नाम राहुल देव बर्मन था, उन्होंने हमें इतना अच्छा सुरीला म्यूजिक दिया है कि 5 नहीं 7 नोट और बहुत सारे वर्ड के म्यूजिक को मिला जुला के एक ऐसा सुर का समा बांधा जो हम कभी नहीं भूल सकते। उन्हीं की कंपोजिशन में से एक और गाना आपके लिए ACT देसी पे। बने रहिए और आनंद लीजिए इस वीकेंड स्पेशल का।

के फादर यानी एस टी बर्मन ने कंपोज किया था, जिसमें म्यूजिक वो उनका फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जिसमें उन्होंने कंपोज किया एक पहला गाना जिसका टाइटल था ए मेरी टोपी पलट के आ। और इसके बाद ही 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में एक बहुत ही फेमस सॉन्ग जो शायद आपने सुना भी होगा, जिसका टाइटल था कुछ इस तरह से कि सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, ये गाना जो था ये भी कंपोज किया था राहुल देव बर्मन ने जब वो महज 17 साल के थे। इसके बाद बर्मन जो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे और बजाते भी थे, उन्होंने फिल्म 16 साल में एक पॉपुलर सॉन्ग जो आपने शायद सुना होगा और जिसके अंदर वो पार्ट काफ़ी फेमस था, जो एक माउथ ऑर्गन का पीस था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था उस सॉन्ग का, जो प्ले किया उस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा रोल। और उस गाने को शायद आपने सुना हो जिसका टाइटल था है अपना दिल तो आवारा। इस गाने को हम सुनते हैं एक और अच्छी सी आवाज में, जो थी हेमंत मुखोपाध्याय की। और आप ये सुन रहे हैं एसीटी देसी पे, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XFM 98.3 पीपल।

60 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक असिस्टेंट की तौर से काम किया था, जिनका नाम था चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, जिद्दी, गाइड और तीन देवियां। और इन सब के गाने आपने बहुत बार सुने होंगे और बहुत ही हिट गाने हैं। और ये सिलसिला 1970 के दशक में भी चलता रहा, जिसमें आते आते ही उनको फिल्म फेयर पहला नॉमिनेशन मिला कारवां फिल्म के लिए, जो हेलेन स्टारर कैबरे सॉन्ग था, पिया तू अब तो आजा। ये गाना बहुत ही सेंसेशनल, अगर आप सुने आज भी तो आपका मन करेगा थिरकने के लिए इस गाने पे। और यही एक पावर है म्यूजिक की कि अगर आपने कॉम्पोजिशन ऐसी की है तो वो टाइमलेस होती है। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी टू रिसीव द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा फ्रॉम द फिल्म हम किसी से कम नहीं 1977, ऑल्सो कंपोज्ड बाय बर्मन। बट पंचम दा रिसीव्ड हिज फर्स्ट फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर हिज फिल्म सनम तेरी कसम मेड इन 1981। And in 1981 too, he composed hit music for films like Rocky, Satya Pe Satya and Love Story. तो आइए सुनते हैं अगला गाना आर डी बर्मन की एक और ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन ऑन ACT Desi. I hope आपको मजा आया।

कहते हैं कि रिदम तो इस दुनिया की हर एक चीज में है, चाहे हवा बह रही हो, चाहे पानी बह रहा हो, चाहे आप तबला बजाएं टेबल के ऊपर, या आप सिर्फ अपने हाथ से चुटकी क्यों ना बजा सकते हो। Barmanda was influenced by Western, Latin, Oriental and Arabic music and incorporated elements from these in his own music. उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए अपने गानों में जिसमें उन्होंने सैंड पेपर से लेके बैम्बू स्टिक, चाय सॉसर्स, चम्मच और कंघी जिससे हम अपने बाल बनाते हैं उससे भी म्यूजिक दिया है। इस ब्रेक के बाद मैं एक ऐसा गाना बजाऊंगा जिसमें उन्होंने बियर बॉटल से साउंड निकाला है और वो ओपनिंग बीट्स होती है उस गाने की। लेकिन उसके अलावा उन्होंने यादों की बारात फिल्म में जो गाना था चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उस गाने में उन्होंने कप्स और सॉसर को यूज किया था जिसकी टिंकलिंग साउंड आप उसमें सुनते हैं, टिंग टीडिंग टिंग टीडिंग, याद आया कुछ? और जैसे मैंने बात की कि रबिंग ऑफ अ कोम एंड टेकिंग आउट दैट साउंड रफ सरफेस का जिसमें वूशिंग साउंड आती है, वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा फिल्म पड़ोसन में 1968 में जो गाना था मेरे सामने वाली खिड़की में। एक से एक बढ़कर एग्जाम्पल हैं इंजीनियटी के जो आर डी बर्मन या पंचमदा अपने म्यूजिक में लेके आए और हमें वो एक्सपीरियंस करने को मिला और आज तक कर रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा और एक्सपीरियंस करते हैं उस मैजिक को ऑन ACT देसी। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी RJ विकास के साथ और ये है RD बर्मन स्पेशल।

1970 और 80 का दशक एक ऐसा दशक था जिसके अंदर बहुत सारे गाने कॉपी किए जा रहे थे, उनको रिकम्पोज करके इंडियन म्यूज़िक में लाया जा रहा था। और हालांकि इन्फ्लुएंस था बहुत सारे वेस्टर्न म्यूज़िक का इंडियन म्यूज़िक के ऊपर, लेकिन समटाइम्स बहुत अच्छे अच्छे गाने जो बाहर से इंस्पायर्ड करके इंडियन वर्जन में कंपोज किए जाते थे, उनमें से कुछ गाने पंचम दा ने भी कंपोज किए या रीमिक्स करके या रिकम्पोज करके इंडियन म्यूज़िक में दिए। जो गाना आपने इस ब्रेक से पहले सुना, महबूबा महबूबा, वो बेसिकली बेस था ट्यून ऑफ द ट्रेडिशनल साइप्रस सॉन्ग से यू लव मी। इसके अलावा नासिर हुसैन वॉन्टेड टू यूज़ एबाज मम्मा मिया, और उस गाने को पता है आपको किस गाने में हिंदी में लाया गया? शायद आपने वो गाना सुना होगा, मिल गया हमको साथी मिल गया, याद आया कुछ? मामा मिया वो गाना उसको कंपोज करके रीमास्टर करके इस गाने में यूज़ किया। और ऐसे ही बहुत सारे और गाने हैं जो आर डी बर्मन ने इंडियन कंपोजिशन में बहुत सक्सेसफुली इंपोर्ट किए और हमको वो गाने आज तक सुनने को मिलते हैं और जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पसंद करते हैं। 1970 का दशक ख़त्म ही होने को नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी सारी अच्छी मूवीज़ और गाने उस दशक में पंचम दा ने बनाए, जिसमें से एक था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का म्यूज़िक, जो देवानंद की मूवी थी 1971 की। इसमें एक स्पेशल सॉन्ग था जो आज भी हम यूज़ करते हैं और रिकम्पोज करते हैं और आज भी सुनते हैं तो हमें मज़ा आ जाता है, और उस सॉन्ग का टाइटल है दम मारो दम। ये जो गाना था, द फिल्म प्रूव टू बी ए सेमिनल रॉक नंबर इन हिंदी फिल्म म्यूजिक, और फिल्म मेकर देवानंद एक्चुअली डिड नॉट इंक्लूड द कंप्लीट वर्जन ऑफ दम मारो दम इन द फिल्म बिकॉज ही वॉज वरीड दैट दिस सॉन्ग वुड ओवरशैडो द फिल्म कम्प्लीटली। आर डी बर्मन साहब ने बहुत सारे गाने आशा ताई के साथ कंपोज किए, उन्होंने उनके अंदर उनको यूज़ किया, उनकी आवाज़ को यूज़ किया, और 1980 में उन्होंने आशा भोसले जी से शादी की। Together they recorded many hit songs and also staged many live performances. But क्या आपको पता है कि आशा भोसले जी उनकी first wife नहीं थी? आर डी बर्मन या पंचम दा की पहली वाइफ का नाम था रीता पटेल, जो उनको दार्जिलिंग में मिली थी। उन्होंने शादी की 1966 में एंड दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1971। एक गाना आपको याद होगा, मुसाफिर हूँ यारो, फ्रॉम फिल्म परिचय। एक्चुअली दिस वॉज द सॉन्ग ही कंपोज व्हाइल ही वॉज एट अ होटल आफ्टर हिज सेपरेशन। सुनते हैं एक और बढ़िया सा गाना आर डी बर्मन दा या पंचम दा की कंपोजिशन का ऑन ACT देसी। एंजॉय कीजिए ये वीकेंड और रिलैक्स कीजिए अब।

It is sad, but it is also true that बहुत सारी अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल पाती. और ऐसा ही हुआ ड्यूरिंग द लेट 1980s. R.D. Burman या पंचम दा वॉज ओवरशैडोड बाय बप्पी लहरी एंड अदर डिस्को म्यूजिक कंपोजर्स. मैनी फिल्म मेकर्स हु वर वर्किंग विद हिम फॉर यू नो डेकेड्स स्टॉप्ड पेट्रोनाइजिंग विद हिम एज फिल्म्स फीचरिंग हिज कंपोजिशन फ्लॉप्ड एट बॉक्स ऑफिस वन आफ्टर द अदर. इन 1986 पंचम दा कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर फिल्म इजाजत, विच इज एक्चुअली अ पैरेलल सिनेमा फिल्म, नॉट रियली अ कमर्शियल सिनेमा. लेकिन इसके अंदर जो चार गाने जो गुलजार साहब ने लिखे थे और आशा भोसले जी ने गाए थे, उनको उनके लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक नेशनल अवार्ड और गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए. लेकिन बर्मन दा को इसके लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिला. हालांकि ये कहा जाता है कि दिस स्कोर वॉज एंड इज स्टिल द बेस्ट वर्क ऑफ आर डी बर्मन दा. बहरहाल 1988 में उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके लिए उनकी बाईपास सर्जरी हुई. ड्यूरिंग हिज रिकवरी पीरियड ही कंपोज्ड मेनी ट्यून्स विच वर नेवर रिलीज्ड. और उसके बाद 1989 में एक मूवी आई जिसका नाम था परिंदा, विधु विनोद चोपड़ा की, जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया. आपने इस फिल्म के गाने ज़रूर पसंद किए होंगे, लेकिन मैं जो अगला गाना प्ले करने वाला हूँ वो होगा फिल्म इजाज़त से.

1994 में उनकी डेथ के बाद मूवी रिलीज हुई 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उनको थर्ड और लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और बहुत सारे लोगों को शौक हुआ कि सिर्फ 54 की उम्र में एक म्यूजिक जीनियस इतनी जल्दी चला गया, लेकिन उनका जो लास्ट पार्ट था जिंदगी का वो बहुत ही खराब, या कह सकते हैं कि एक आइसोलेशन में गया, जिसमें उन्होंने बहुत पूरा समय देखा, डिप्रेस्ड हुए और बहुत सारी लोग जो उनके आसपास थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बहरहाल पंचम दा हैज इंस्पायर्ड मेनी लेटर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर्स सच एज विशाल शेखर, जतिन ललित, एंड दे आर कंसिडर्ड टू हैव कैरिड ऑन हिज लेगेसी थ्रू द 1990s। आपको ये जान के हैरत होगी लेकिन हिज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंक्लूडेड हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, लुई बैंक्स, भूपिंदर सिंह एंड केरसी लॉर्ड। एंड उनको जाना जाता है उनकी पार्टनरशिप के लिए जो उनकी गुलजार साहब के साथ थी, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारी सुंदर कॉम्पोजिशन लिखी और उनके ऊपर म्यूजिक दिया पंचम दा ने। आशा करता हूँ आपको ये एसीटी देसी का एपिसोड पसंद आया होगा और आपके वीकेंड की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई है, म्यूजिकल हुई है, और अगर आप इसको इंडिया या किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑफ एसीटी देसी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय फेसबुक पेज विच इज www.facebook.com/ ACT Desi FM। ये जो पिछला हफ्ता गया इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में फिर से आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का और डेल्टा स्ट्रेन का, जो हाईली इन्फेक्शियस है, और कैनबरा में स्पेशली अब पहली बार आई थिंक इतने टाइम के बाद लोगों को कहा गया है कि मास्क मैंडेटरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ पहनना है कहाँ नहीं पहनना कन्फ्यूजन है, तो मैं उनके लिए सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये डाउट है आपको कि अभी यहाँ पे पहनना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक पहन के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अब वो ऐसा टाइम है कि अगर आप पकड़े जाते हैं विदाउट मास्क तो आपको अप टू $8,000 का चलान या फाइन भरना पड़ सकता है। और मुझे पता है कि स्कूल हॉलीडेज भी चल रहे हैं तो बच्चे भी धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे, क्योंकि आपके प्लान्स जो थे बाहर जाने के वो अब कैंसिल हो गए हैं और आपको कोशिश करनी पड़ रही है कि बच्चों को कैसे घर में ही एंगेज रखें या लोकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसीटी में यानी कैनबरा में, जहां पे आप जा सकते हैं फिल्म्स, एक्टिविटीज एट मॉल्स एंड डिफरेंट, आइस रिंक इज़ देयर इन साउथ पॉइंट टगनोंग, और सिटी के अंदर भी जहां पे आप जा सकते हैं, फूड ट्रक्स हैं। इन्जॉय कीजिए अपना हॉलीडे और प्लीज़ बी सेफ एंड कीप दी अदर सेफ टू। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, कोविड अभी गया नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशंस ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ली हैं। आइए सुनते हैं एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन फ्रॉम आर डी बर्मन एंड रिमेंबर हिम फॉर अ म्यूजिकल जीनियस दैट ही वॉज। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।